0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तय दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन। बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03265 65 65 60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03262 66 11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए सुन सकते हैं और हर एक इंटरनेट रेडियो जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आप सभी सुनने वालों को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है प्रोग्राम भजन यात्रा में। और भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

इसमें इसकी जरिए पेश की गई हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। हरि हरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा में। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को आज सोमवार का दिन शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। चले भजन यात्रा प्रोग्राम में अब की बार श्रेया घोषाल की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म बनारस, उसी फिल्म से ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अबकी बार ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है आज की सोमवार की सुबह के प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा में।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई अनुराधा पोटवल जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में चलिए प्रोग्राम में श्री शिव चली साहब इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है गोल्डन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में आप सुनते ही।

सुन वॉइस ऑफ प्रदीप की आवाज में ये सुंदर सा शिव चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुन वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुन वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुन वालों आरती भजन अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। आरती भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। यहाँ तक रेडियो SBS के जरिए आज सोमवार की सुबह की प्रोग्राम में भजन यात्रा प्रोग्राम सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Oko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Oko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti.

सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल और शान की आवाज में। ये गाना जो पेश किया जा रहा है

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अदनान सामी और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में पेश किया जा रहा है

0: खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में बस पेश की गई
1: है।
0: चलिए आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। साथ में होगा लता मंगेशकर और फिल्म का नाम मैं

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पीस की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। कमल बारूद प्रोग्राम में फिल्म का नाम मन मौजी।

बीच की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम मनमौजी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए गाना मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम आवारा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

हसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। एक गाना बस प्रोग्राम में अगली बार पेश किया जा रहा है। द फिल्म फिल्म का नाम है प्यार किए जा। हम आपको ले चलते हैं फिल्म प्यार किए जा, उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है। गाना का बोल है किसने पुकारा मुझे।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई, फिल्म का नाम प्यार किए या। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। किशोर और आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे।

रेडियो SBS के जरिए किशोर आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है किशोर एन लता मंगेशकर प्रोग्राम में

एन लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाता रहे मेरा दिल गाना जो पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में जो आप सभी ने सुना। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है सभी इन्फॉर्मेशन के लिए, सभी कामकाज के लिए 0325656560। इसी तार की नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं, या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio sbs.nl की जरिए।

صحبت مشهوری محمد رفیقی عوض بگی جنب از پروگرام بی پیسکیده اب سبی اور سبی سنوالو کیسی بابی एक गाना बस किशोर और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे आज के प्रोग्राम में अपना देश उसी फिल्म की ओर। किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

किशोर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और आयशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है फिल्म यादों की बारा। खूबसूरत नगमे आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस के जरिए मोहम्मद रफी एंड आयशा।

पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम हमराही।

मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम हमराही, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। चले मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

में आइड फिल्म बसेरा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर। उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल थीफ।

0: हर रोते को हंसा हंसा के गाए जा तू, जब तक है दम मतवाले हम मतवाले तुम।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11, इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मुकेश और सुमन कल्याणपुर प्रोग्राम

सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार

सुरेश भटकर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में आपकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

तेरी कसम। पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। काली टोपी लाल रुमाल उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अब की बार पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS के जरिए जरूर सुनते ही रहना।

अनु और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना पेश होगा सोनू निगम और अलका जी की आवाज में, फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

रेडियो SBS की जरिए फिल्म हसीना मान जाएगी, उसी फिल्म का ये गाना पेश की गई सोनू निगम एंड अलका जी की आवाज में। गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में अब की बार कुमार सानू और खास तौर पर साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हेट स्टोरी नंबर दो, उसी फिल्म का ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है सुनिधि चौहान की आवाज में।

सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा अलका याग्निक एंड बाबू सुब्रियो की आवाज में। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

अलका याग्निक और बाबू सुब्रियो की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज में। और फिल्म का नाम

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मोहित चौहान की ओर, मोहित चौहान की आवाज में ये गाना।

हन की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है, चलिए प्रोग्राम में अब की बार हम

में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11।

ही रहना। आज भी ये बहुत सी सुनने वालों बस रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। कुमार सानू जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे के गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। और अब की बार प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं साउथ खान और प्रभा भारती की आवाज में ये गाना।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म परवाना फिल्म का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। उदित नारायण और अलका की आवाज में खास गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम है

की प्रभा में पेश की गई पहले मोहब्बत फिल्म का नाम पहले मोहब्बत, उसी फिल्म से ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहडोल ट्रैक से।

खान एंड हर्षदीप की आवाज में फटा पोस्टर निकला हीरो, फिल्म का नाम

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा रहा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। अब आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम कभी कभी। हाँ, उसी फिल्म का एक गाना किशोर एंड लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एड फिल्म कभी कभी उसी फिल्म का गाना भी आपने सुना। चले अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार और फनी की आवाज में।
1: प्यार कभी कम ना करना सनम, हर

राम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए कंटोर का टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। चलिए आज की प्रोग्राम में कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। कुमार सानू और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, संगीत भरी स्टेशन शहरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। एक काफी खूबसूरत प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में कुमार सानू और अलका की आवाज में, इतना भी ना चाहूं मुझे कि तुमसे दूर ना रह सकूं।

सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में। कितना सुकून कितना आराम, साजन की बाहों में फिल्म का नाम, साजन की बाहों में उसी फिल्म का गाना आज की इस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। जरूर प्रोग्राम को आप सुनते ही रहना कुमार सानू जी की आवाज में। ये गीत

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म सावन की ओर हम आपको ले चलते हैं। एक फिल्म जो 2006 में रिलीज किया गया है, कुणाल गांजावाला की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

जान किया बांस में ये गाना भी इसकी गई फिल्म का नाम सावरिया, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पीस की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक पुरानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है साथी, लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना रेडियो SBS की सरिये।

डिस्कर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि फिल्म साथी का गीत आपने सुना और बेहद पसंद किया है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: में ये गाना पेश की गए जीवन से भरी तेरी आंखें, सफर फिल्म का नाम था, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Voel de muziek.

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हूँ। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं प्रसून मुखर्जी की आवाज में हेमंत कुमार का एक खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

प्रसून मुखर्जी की आवाज में ये गाना पेश की गई हेमंत कुमार का खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए द माइटी मुकेश प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते ही रहना।
1: मैं जिंदगी

रेडियो SBS के जरिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। आशा जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं फरमाइशी इश्तिहारे। जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में आपके हर एक काम काज किया जा रहा है। सभी इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए 03-265-65-60 टेलीफोन नंबर होता है। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर

आवास में गाना बस पेश की गई SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना।

जेंटलमैन विद एवरी क्वीन वॉइस किशोर कुमार। और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने।

किशोर कुमार और खासतौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में एक और काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में

की आवाज में गाना बस भी इसकी गए फिर जन्म लेंगे हम। काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। पुरानी नखमे की प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS के जरिए, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है मुकेश एंड लता प्रोग्राम में। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश एंड लता जी की आवाज में।

मुकेश लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। महेंद्र कपूर आपकी बार प्रोग्राम में। महेंद्र कपूर

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: कर लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

गुरनालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एंड गजोंग दोर लता मंगेशकर कॉम्ट आर द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

ये नयन दरे दरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों की लहर में अगला गाना फिल्म खामोश। ये नयन दरे दरे आपने सुना हेमंत दा की आवाज में फिल्म कोहरा से। और अब आप सुनिए प्रोग्राम गीतों की लहर में अगला गाना फिल्म खामोशी से। वो शाम कुछ

आपने सुना फिल्म पागलपंती से, और अब आप सुनिए अलका याचिका और उदित नारायण की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

सारे सपने कहीं खो गए, हाय हम क्या से क्या हो गए। अलका याचने की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, अली असमत की आवाज में फिल्म जिस्म 2 से, मौला मौला।

मुझे रंग दे, इसको समझो तो आशा भोसले एंक वामा द फिल्म तक्षक एंड द एल्बम दुनिया जिसे कहते हैं कम थो समझो जगजीत सिंह। कल चौदहवीं की रात थी।

वारा जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह मैथ। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। दित प्राख्त लीजिए सुसों दो जगजीत सिंह एंड चित्रा सिंह। फोन लीजिए सो खुसों दो जगजीत सिंह एंड कम दे सकेर आई द फिल्म अर्थ। झुकी झुकी सी नजर, दिल में प्यार है कि नहीं।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्सा इस het volgende liedje via Radio SBS किस्तों।

भी सरफिरा तू भी सरफिरी इस गजंग दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम्स आउट द फिल्म कट्टी पट्टी एंड आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम द टाइटल सॉन्ग गजंग दौर अलका याचिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। इस वजह मधुर कुमार सानू है बस अवद अवद फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान खसा मधुर जावेद अली कौम तू जो मिला।

फिल्म तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो। और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में, कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से क्या हुआ तुझे।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।